beautiful piece on the Basuri there by Shriyan Maharaj on your number one Radio Jagati, 102.7 FM. And we've got 6 minutes after 8 here in Trinidad and Tobago. Saying Sitram once again, Tanti Malti, also there in Orlando. To all our listeners, the Bug Fans, choices, choice of blessings. How about this one for you, Tanti Malti? Did this one earlier on, but another version here. Nahi chaye rang mahal na dhan daulat ki shan hum to mange tujh se malik ek santosh ka daan ki ghar ghar mein khushiyali ho sada sukh ki hariyali ho. Oh Lord, neither a colorful and majestic palace nor the pride of massive wealth will be enough for this human mind. Therefore, I will not ask for majestic properties or the ego of wealth. All I humbly beg for, O Almighty, is a gift of contentment. May our home and every home be blessed with the lushness of happiness and contentment. Tune hamko janam diya hai tu hi palanahar. Teri daya se phule phale hum sab ka ghar sansar. Nahi chahiye हीरे मोती ना रतनों की हार हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान. ओ लॉर्ड, यू हैव गिफ्टेड अस दिस ह्यूमन लाइफ एंड यू आर आवर कॉन्स्टेंट केयर टेकर एंड प्रोटेक्टर. प्लीज लेट आवर होम्स फ्लॉरिश विथ योर काइंड ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ प्रेशियस जेम्स डायमंड्स पर्ल्स. वी आस्क फॉर द हाईएस्ट ब्लेसिंग ऑफ कंटेंटमेंट. सुख के बदले दुख देने की अगर भावना तेरी दुख को सहने की शक्ति दे यही प्रार्थना मेरी. किसी के आगे हाथ न फैलाए अपने मानत का सुख पाए इतना दे वरदान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान. इफ इट इज योर विल ओ लॉर्ड दैट इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस आई फाइंड सॉरफुल टाइम्स देन प्लीज गिव मी द फोर्टिट्यूड to withstand all suffering. Let me not have to spread my hands to beg help from anyone, since you will be there for me, O Lord. Please, let me get the benefit of my earnest work, and please, to bless me with contentment. Nahi chahiye rang mahal, na dhan daulat ki shaan. Hum to mange tujhse malik ek santosh ka daan, ki ghar ghar mein khushiyali ho, sada sukh ki. हरियाली हो.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

जब जब वन में आग लगी है हमने आंखें सेकी है, जब जब वन में नची मोरनी आंखें भर के देखी है।